कौडी बदले त्यागे रतन छोड़ जाहे वाहू का जतन सो संचो जो हो छी बात माया मोहा टेडो जात अभागे तै लाज नाई सुख सागर पूरन परमेसर हर ना चेत्यो मन माही अमृत कौड़ा बिखिया बीठी साकत की बिद नैनो डीठी कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कवे न उस्तत करे निर्भव निरंकार दातार तिस से

कहे दिव्य कहे जिसको हर पग मचितिया में तो संत सुहेला नहीं डोलावे जिस पर अपना कृपा करे जिस पर अपना

और बात करते तो कोई मिकदार नहीं। बाबा जी की भी बेनती की, बाबा नरसिंह जी महाराज बेनती की थी, महाराज आपके पास करो। बाबा जी कहने लगे इतना थोड़ा खाओ जिन्हें नाम सारा दिन शरीर पीड़े ही ना खते डिखाए ना वो भी कोई खाने। बाबे ने किया है सबरत मिठे बनिए सुनिए साधुए हर तुरसी मुख बोलने मारन नाल किए छत्ती अमृत भावे जाको नजर करे बाबा होर खाना सुखी खुआर जित खाते सन पीड़िए मन में चले विकार वो खाने की खाते ये वे मन विकारी बने आए हर वेले पीड़े ही नहीं। मुसलमान रोजे रखते सिख रोज रोजा रखते रोजे का मकसद यह नहीं भी खुदा आप कोई सोचे और रोजे का रखने का मतलब है शरीर की शुद्धि शरीर की शुद्धि। डॉक्टर को जानिए डॉक्टर साहब फरार हो गए क्यों हो गया खट्टे निकाल आए सब एक दिन फाका कर रहे दवाई मिल गई अपने आप में ना ठीक हो जाए तो इसी तरह रोजा रखना बन रखना ये नहीं भी कोई एक कर्म नहीं सिर्फ शरीर की शुद्धि वाले शरीर ठीक हो जाता है पर गुरु का सिख तो रोज रोजा रखता रोज वर्त रखता तो केड़ा थोड़ा खड़ ये शरीर ठीक रही डॉक्टर को जाने नहीं पे बाबा जी ने वचन किया इतना थोड़ा खाओ जिद नाल शरीर बोझ नहीं ना बन तो इतना थोड़ा सौ जिद साडा अमृत वेला सौ की ना इतना अलम आहार अलम सी थोड़ा सोना खाना थोड़ा बोलन गुरु पाए एक बहुता नहीं बोल सारा दिन गप्पा ही नहीं मारे थोड़ा ये भी गुरमत है फिर काल खाए सुकृत करे काला काल के सुकृत करे वड्डा होए ना आप गणाए जी गुरु ने वड्याई बख्शी है तो जनाऊंगा नहीं वडेरिया गुरु वालों आदियां फिर हमें च नहीं आता आदाब करता तुझा के आदा तुम्हारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नहीं ये गुरु बख्शिश तो गुरु की वड्डा हो आए फिर पैसा जी कहने सात सगत मिल गांव दे रात दे निचल कर ये दो टाइम देने मेरे किरत भी करनी कमकार भी करना अमृत वेले ते शामा आके गुरु नाल जुड़ना है जिस तरह तुसी जुड़ के करना की है शब्द सुरत पर जा करे गुरु दे शब्द दी विचार सुननी ते करे सतगुरु परचे मन पर जाए फिर भाई साहब जी कहते सिख दा जीवन आसा विच निराश आसा विच रहिंदा होया निराश क्योंकि जे आसा आसा रखिए तो जे ना पूरी होवे तो मन बड़िया चाहिए करे चला आसा विच निराश ते सिख है उदम करे जिस तरह तुसी उदम की बंदगी दा स्वरूप की है। बाबा जी बचन करते सन कर बंदे तू बंदगी जिचिर घट में सा हो बंदगी का स्वरूप हुक्म है आपको क्योंकि स्वरूप जितने तक स्वरूप लखना ना बने उतने तक मन जुड़ता है क्यों निशाना कोई नहीं है ना सन तो बदगी का स्वरूप जोड़ा है वो है हुक्म सिख जरा किरत भी करता है नाम भी जपता है बच्चों नाल भी प्यार करता है सैर भी करता है हंसता भी है तंगे कपड़े भी पाता है गुरु नाल भी जुड़ता है ये सब गुरु का हुक्म मनिए होवे परवान ता खत्मे का है बस पाई समझा साहबा ने तीन दिन वास्ते किया निर्णिया सैयद बुद्धू शाह को आ गया चिट्ठी लेके कहता बुद्धू शाह छेती चिट्ठी पढ़ के सुना क्योंकि मैं घर पहुंचा सैयद बुद्धू शाह ने गुरु का हुक्मनामा पढ़ के सुनाया और लिखे आया कि तुम शर्म करो।

मछली कैसे अपना कैसे देखा तैसे निकली मछली पानी को बिछड़ी नहीं तो जीवन हो गया। गुरु का सिख जिस वेले गुरु ने हुकुम च रहा है तो बख्शिश ही बख्शिश है, जिस वे मनमत आ जाता है तेरे लगी आन आता है अपने पानी जो चले पाई सो बिछड़े जो मच्छी की जाने सागर के दम पंछी की जाने आकाश के दावड़ा पाई सजात की जाने गुरु के दावड़ा है मेहमान न जाने मेरे बड़े हो बड़ा पार तेरा भाई सज्जा चला जा गुरु कौन ये विचार बनाया है तो एक चिट्ठी भी मेरी ले जाए जाके गुरु नु देके अरदास करी कदे मैं पापी से ही बख्शिश करे गुरु मैनू भी दर्शना दीता भाई सज्जे ने किया ठीक है गुरु साहब अगे गुरु की चिट्ठी तेरे को ले आया हां ते तो 9 महीने ढक दिता है ये तेरी पत्रिका लेके गुरु को चला गया गुरु 18 महीने ढक देगा उन्होंने की कर मैं नहीं कर चंगा भी तेरी मैं ख्याल है चलो मना अपने पिंड चलते शहर कोई बच ही गया हो तो भाई सज्जा अपने पिंड पड़ते आया की वेखिया जिथे कखा की कुली सी उथे आलीशान मकान बनया बिर पिया तक जिन्हें सुनामे ने तके सुनामे उत्ते भी यह समाया भगवान कृष्ण के सुनाम दोवे सुदीपर की कोट पढ़ते विद्या पढ़ एक दिन समीपर जी की घरवाली ने कहा बच्चे हो जी मां जी घर भी लकड़ा कोई नहीं लकड़ा लिया गिरगल दोवे तुरंत है समीपर जी की घरवाली ने सोचिया बच्चे हम जल्दी नहीं जा रहे हैं तो लगेगी सुदामे गल सुन कौन लै थोड़े जे छोले रन चने रन पोटली जम दिते जिसने डांडी भुख लगे ये खा के ते पानी का घुट पी लिया लकड़ा कटिया पंडा बनिया सिर पे चुकन लगे गर्म कार की नेत मारी डांडी मारी रात पे भगवान कृष्ण ने क्या सुनामे हम कि करिए घर तो पहुंच नहीं सकते जंगल का मौका है सुनामे ने क्या महाराज कोई आ दरख्त है बड़ा वड्डा इन उत्ते चल चलते हैं रात इसलिए बिताऊने दिन होगा फिर तक एक दान के उत्ते भगवान कृष्ण जी बह गए दूजे उत्ते सुदाम भुख लगी सुदामे ने छोले वाली पोटली कटी सुदामा सोचन लगा मैंने जिस तरह मैनू भुख लगी है कृष्ण नू भी लगी होनी ते छोले छोड़े कृष्ण नू तो पता नहीं तो क्यों ना आप ही छक लेंगे भुख बड़ी जालम थी तो सुदामे ने की किया छोलिया वाली पोटली खोली ते एक फटका मारे प्यारी सास संगत जिस वेले छोले दंदा थले आए ते सुदामे ने जिथे आवाज आई रात का समा जंगल का मौका टिकवी रात तो दूजे डांग उते बैठे भगवान कृष्ण ने कहा सुदामिया कुछ खांदा पे सुदामे ने छेती छेती मारा इथे पता की खाने मैं तो बोली बेहतर भगवान भी चुप कर थोड़े समय के बाद सुदामे जिस वे दूसरा बका मारे रवादाई भगवान
भी कहने लगे भी स्वामी हम खा रहे हैं। महाराज तो कितना पता है इसे पता तो मेरी मां बैठी है मैंने कुछ देर वास्ते एवं गरीबा ना विरास न कर भगवान जी बेचुक कर कोई समय में बात प्यारी साल संगत से सुना देने तीजा फटका मारे फिर आवाज आई भगवान जी कहने लगे स्वामी है भावे मन से चाहे ना मन पर कुछ खा जरूर है मारे तो हम कि पता है भगवान जी कहने लगे सानू आवाज पी आई है दंदा की तो सुनामी ने कि हमारा तुम बड़े खुश तुम पता नहीं मेरा शरीर जरा दुबला है ते बारिश हुई है ते शरीर भुखन लग गई है ते मेरा तो दंद से दंद पिया बजता है तो तुम कि कमरे तो उस वेले भगवान कृष्ण ने वचन कर दिता जाओ दलिद्री दलिद्र कहते हैं कंगले नीवी जरीर जाओ दलिद्री तो पित्र प्रोह किया है क्योंकि वन के खाना संदगी दिखा के खाना शर्मिंदगी खो के खाना गंदगी जो खो के मैं खाता है उसका गंदगी खाता भगवान ने वह वचन किया पूरा संदीपा जी को पढ़ के विदेह भगवान कृष्ण जी तो द्वारका नगरी में मार्ग जा बने तो सुदामे ने कर सारी दुनिया का दलिद्र है कारवाली सुशीला निके निके बच्चे खान कुछ नहीं मिलता है कि सुशीला ने किया प्राणी मैं सुनिया है कि भगवान कृष्ण थोड़े मित्र सुदामे ने किया था पढ़ना भगवान को क्यों नहीं जाते आप भुखे पर मरते जी भगवान कृष्ण वर्गा तो मित्र है नाले अवतार भी है नाले राजा महाराजा भी है उन्होंने को क्यों नहीं जाते कुछ मिल जाएगा इस दिन चंगे मतीत हो जाए स्वामी ने कि अपराजा वाली जब तक तेरी ठीक है पर मित्र को बदले शर्म यात्री है शर्म का भी वो अवतार भी जरूर जब तो भाई साहब भाई गुरुदास जी लिखते हैं विप्र सुदामा दाल दी विप्र केंद्र पंडित सुदामा ब्राह्मण दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए लागू हुई बावड़ी करवाली सुशीला जड़ी थी उन्हें मजबूर कर दिया स्त्री का हट भी बड़ा जबरदस्त स्त्री खेला है वो भी बड़ा पर्व लागू हुई बावड़ी मिल जगदीश दलित्र गवाए चलता गिरदा गिटिया कीकड़ जाइए कौन पिलाए ये ठीक है बचपन कट्ठे खेलते रहे खाते पीते रहे पर वो राजा बन गया मैं तो गरीब आदमी किस तरह उन्हें कोल मुलाकात होगी किस तरह उन्हें कोल पहुंचे भाई साहब जी लिखते चलता गिरदा गिटिया कीकड़ जाइए कौन पिलाए उनका नगर द्वारका से सिंह द्वार खुलता है कई दिन बाद सिंह धर्मांत भी के जिसने द्वारका पहुंचे भगवान कृष्ण के महिला और अंदर जान लगा दरबार में रो क्या वे किधर जा रहे हैं जी मैं भगवान को मिल सके पीछे हट बेचारा सुना मैं डरता है पीछे हट कोई गल नहीं मैं अगे ही पता थी गरीबा कहा होंगे एवं घरवाली ने जिद की आना ही नहीं पर सुदामा रो मना इतनी दूरों आए निराश ही चले जाएंगे भगवान ने तकिया रोंदा क्यों है सुदामे ने किया बड़ी दूरों आया आस तार के मित्र को मिलवा केड़ा मित्र भगवान कृष्ण मेरा मित्र राहो भगवान कृष्ण के मित्र अपनी शक्रवत्ता दवे इतने राजे महाराजे आके खड़ोदे कोई पूछता नहीं तू किधरों का मित्र सुदामा रो के कह लगा है दरबार मैं सच की दरबार ने भी जिला के सके मत्थे से तिलक लगा होया ब्रह्म जा इसी खैर पहला मैं जाके बेनती कर रहा सुदामा बाहर खड़ोगे
ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਰੁਕਮਣੀ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ ਚਰਨ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ? ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ। ਭਗਵਾਨ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹੀ ਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਸਭ ਪਤਾ

के दरवाजे के खड़ोता होया बिट बिट पिया तक हसन पही निगाह दे नाल वेख ले भगवान ने किया है दरबार ओदा नाम भी पूछ लेना सी दरबार ने किया नाम भी दस क्या नाम है द्वार खड़ा तुझ तुरू बलिछो देख रहे हो वसुधा अभुरा पूछ तू दी।

दूसरे शब्द शरण गुरु जी भरत नारद पदार्थ गोसाग पर्याय वाणी गुरबाणी लागे तिन हस्ते।

सेवा प्रवान करने क्षमता देने की जो भी आपकी दुनिया की कम्बा का जन्म त्याग की सूर्य के लिए इस मिले करना आप गुरु दरबार में विशाल की परिये अते हम आप ही अमृत ने की तन रागा दे विच गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा अनुसार गुरु अर्जन साहिब की मर्यादा अनुसार सर्वन कीता है स्वतंत्रता दे आओ अत दे विच सर्वक माए भाई कितने गुरु चरणा बैठे हो छोरी आर के अरदास बेनती चौधरी करनी है सतगुरु दास जी हे काल पुरख सर्व शक्तिमान परम पिता परमेश्वर कृपा करो साडी छोरिया विच अपने पवित्र नाम की खैर पाओ आओ जपो सारे लवाओ हाजियां कोई रिश्ता खाज न जाए।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा इस शब्द जो आप जी ने श्रवण किया है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नू असी जो खो चुके हैं, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं, अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी, इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल है, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे हैं, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण की है जिथे वो आखते हैं असी मंजिल दे करीब तकी जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए। पंक्ति सुन वाली है, कहते हैं साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहते यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों उसकी मंजिल नालों उसके डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, इसका अर्थ यह होया कि यात्रु नू ए नहीं पता कि वह जा किधर नू रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मतलब कि तुहाडी हालत यह है कि तुहानू ए पता नहीं तुसी किधरों आ रहे हो और किधर नू जा रहे हो, बस ए आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे ते कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो, जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

0: अमृत धारी गुर निमख न मन ते तारी रे, दर्शन परसन
1: सरसन हरसन
0: रंग रंगी करतारी रे,
1: खिनरम गुरगम
0: खिनरम गुरगम खिनरम गुरगम नैदम हरदम हर कंठ नानक गुरहारी।

महापुरुष की निज कर वासा हो गुरबाणी गावो भा अमृत वाणी अमियो रस अमृत हर काना अमृत वाणी अमियो रस अमृत हर काना मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ उपदेश सुनो गुरबाणी गावो पाए उपदेश सुनो तुम गुर सीखो।

सफल हो मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद गाना गुरबाणी गावो पाई सुख सहज आनंद गाना तब जपते हैं दुख जाए नानक नाम जपत सुख लुके।

गोपाल गोविंद ना कबूल झोरिया देह दस मन चाओ न जाए सूर्य देह दस मन चाओ

श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार, सच्चे तेरे करने सर्व विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान।